0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
4: It's 7 AM. Behind the Kusad Bajo.
5: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासी वर्ल्ड कॉलेज साबुन सूचीवादी संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87
1: सवारी साधन को हिंदी में तीसरी श्रृंखला संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरु तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरीद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधन को इंजिन र चेसिस को अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भई नभएको रुजु गरेर मात्र खरीद बिक्री गर्नका लागि यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। उत्तर प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय।

0: पीपल्स कैंपस काठमाडौँ को भर्ना सम्बन्धी सूचना।
1: 45 वर्ष को विश्वास बोकेको देशकै अग्रणी सामुदायिक कैंपस पीपल्स कैंपस काठमाडौँ पकनाजोल में व्यवस्थापन तर्फ कक्षा 11 में भर्ना खुल्यो।
0: अनुभवी शिक्षक शिक्षिका स्मार्ट पढ़ाई र उज्जवल भविष्य अब सब एक ठाउँमा।
1: यहाँ टीओ अंतर्गत का एमबीएस बीबीए बीबीएम र बीबीएस कार्यक्रम संचालन में छन्।
0: थप जानकारी का लागि फोन नंबर 01-5551-990 5551-990 में संपर्क गर्नुहोला। नेहरूले निर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अत्यन्त जरूरी सूचना। यस नेहरूले निर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा

0: मरेंगे
1: ये तो रगत ही रगत बो चामो तो तीस ये मैंने सब दिन हम
0: तेरी का कुछ तो निब्रा क्रॉस बाटो बाटो करते पर रे खराब दिन बाटो को बाटो काटे को ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले
1: अरे ये रहता दम्मे हमने तूने मोटरसाइकिल चलानी बाँचे बाटो काटने में ऐसी मौत दियो कि बस नहीं क्यों इसे गान सही ना
0: तीन से ज़बरा क्रॉसिंग बाटो बाटो काटे को ऐसा नहीं हुई नहीं क्यों हुए नहीं ये रहता
1: वो तो ती बोले तो बाटो काटा ज़बरा क्रॉस बाटो मात्री बाटो काटो वो बोले को
2: हो बाटो काट दा ज़बरा क्रॉस बाटो काटो जेब्रा क्रॉस में अनिवार्य रूप में सवारी साधन रोकौ र पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न दिउ
3: सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल प्रयोग नगरौं बाल बालिकालाई सड़क नियम सिकाऊ र सुरक्षित स्थान में हिड़न प्रेरित गरौ
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: खै जन्मदाता दिनुस् त
0: जन्मदाता गरेको छैन नि मैडम
1: जन्मदाता न भए त विद्यालय भर्न हुँदैन नि
0: मलाई त थाहा नै थिएन मैडम
1: बालबालिकालाई विद्यालय भर्न गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी बनाउन बैंकमा खाता खोल्न अनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पाउन जन्मदाता अनिवार्य हुन्छ
3: त्यति मात्रै हो र दाई जन्मेको 35 दिनभित्र स्थायी ठेगाना वा जन्मेको ठाउँको वडा कार्यालयमा जन्म दर्ता गराउनु पर्छ
2: जन्म र मृत्यु दर्ता परिवारको मुख्य व्यक्ति वा 18 वर्ष उमेर पुगेका घरको सदस्यले वडा कार्यालयमा गराउनु पर्छ
3: विवाहको सूचना पति र पत्नी दुवैजनाले दिनुपर्छ सम्बन्ध विच्छेदको सूचना अदालतको निर्णय सहित पति वा पत्नीले दिन सक्छन्
2: जन्म मृत्यु बसाई सराई विवाह एवं सम्बन्ध विच्छेदका घटना विलयमा दर्ता गर्न नागरिकको कर्तव्य हो
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मात्यजित कोशी समावेशी विकास आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मात्यजित कोशी को समृद्धि मात्यजित कोशी गांवपालिका सुनखुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्तों बुधवार सांस साढ़े सात बजे देखिए 8 बजे समय सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ ऑनलाइन और सुनो एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुनना सकूंगा

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चुकना हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भैर
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का अति उपयोगी उखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्सको सुविधा सहित हुंडाका सबै मोडलका मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कम्पनीकै मूल्यमा पाइने
1: जुनसुकै मोडलका जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सचेन्जको सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरिद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइनबाट बुकिङ गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ
2: उखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टिपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुइँचाङ
1: सम्पर्क नम्बर 0375902022 9852988002022 र 9842880300।

అత్యంత దిగి ఈమె వేదనను ఒక స్థూతనాత్మ కారణేశ్వరిని బిజులకు సామర్థ్యం బజర్కు చార్చారుగా పోసేసారి పట్టే పైన वाइडिंग का सामान जी खुशी ती तैयार लौ नया सामान पाने पुरानो सामान मरमत होने ये तो ढूंढना खोजता बेलता मिले जस्ती भीदी हजुर बिजुली को भरपर्दो सह यात्री शांति स्टोर एण्ड सप्लाइज सोलु दुकुण्डा नगर पालिका वडा नम्बर 5 सल्लेरी सोलुखुम्बु यहाँ बिजुली का सम्पूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में पाने का साथ ही नया तथा पुराना सामान मरमत पनि गरिन्छ। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर गुरु कुल नारायण श्रेष्ठ 97-63-57-84 विवेक श्रेष्ठ 98-62-82-00-00 सुनु दुपकुंडा नगर पालिका 5 सलिरी सुनु।

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू

संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाइन दिव्या कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल तार पाइन सीपी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गई आयोग सीपी कंपनी को फ्रिज डिफ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवेवन मुहाने गीजर गैस सिलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण कर हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेक्की पाल्छा वाल मिक्सर मोनी सर्वो बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रीज डीप फ्रीज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन ये सब मरम्मत गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ठेकी कलर कर समीरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशॉप गैस सिलिंडर गैस सुनो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्क पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री कर नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203089 0385203060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841902549 न्यू स्टार कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सन्नी सुन।

0: 才华之旅，索路 FM 不打烊。सोलु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु FM स्टुडियो टाइम
2: 5 PM साँझको 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन क्षेत्र हुंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रवृि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भैर
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का अति उपयोगी ओखलढुंगा खोटांग को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुके मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट और सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत
2: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई
1: संपर्क नंबर 037590222 9852288022 और 9842880300।

कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध माप्य दूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र माप्य दूतकोशी को समृद्धि माप्य दूतकोशी गणपालिका समिति के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोसों बुधवार सांस साढ़े सात बजे देखि आठ बजे समय सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज ऑनलाइन और सुन एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन सकूंगा।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: City FM, the studio time.
0: It's 7 p.m.
4: टाइम चेकको साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुकुम नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: பிரதிபத்தவரை கொடுத்திருந்தால்
1: பூர்ணமரியான தயாரிச்சு நேபாளி சேனாந்திக்கு மகான் உத்தேச பிரதி பிரதிபத்த नेपाली शान्ति सैनिकहरु संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट प्राप्त मिशन म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छन्।

0: Raio Rádio, Sono FM,
1: Sono FM, XA1.2 MHz.
2: Usual Bhavishya ko lagi, hamro abhiyan.
3: Sound check. Sono FM, studio time.
4: 10 p.m. रातको 10 बजे
1: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु